0: also have Mr. Rai on the phone line with us, Uttar Pradesh Congress Chief. Mr. Rai, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने अभी बोला है कि ऑपोजिशन अपना स्टैंड चेंज करता रहता है अयोध्या के ऊपर.
1: नहीं नहीं, अब कांग्रेस की बात मैं करना चाहूंगा.
0: जी,
1: कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है. हम भगवान भक्त हैं, भगवान के इनकी तरफ अधर्मी नहीं है, दिखावटी नहीं है कि भगवान राम का पैसा खा गए, चोरी कर लिए. कांग्रेस दान हमेशा करती रही है, चाहे वो अपनी संपत्ति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे अपने पूरे जो समाज के लिए समर्पण है वो कांग्रेस पार्टी का है. भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का चढ़ावा खा गई, चंदा चोरी कर गई, जमीन का घोटाला कर गई, और गौकसी जो सबसे ज्यादा गौकसी हो रही है इसमें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गौ का मांस बेचा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर. हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे है उसमें. ये उसका पैसा खा रहे हैं, वो क्या बात करेंगे चढ़ावा चोर. ये चढ़ावा चोर लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के, पूरा अंदर काला है इनका और ऊपर से गेरुआ वस्त्र ढके हुए हैं योगी जी. ये पूरे भ्रष्ट लोग हैं जो पूरे भगवान राम के मंदिर को, या आज भगवान के राम के जन्म स्थान को इन्होंने बदनाम किया है, जहाँ भगवान राम जन्म लेकर जहाँ पे आज पैदा हुए उस अयोध्या को कलंकित किया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने भगवान राम का चोरी चोरी कर. कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवान राम के आदर्श हम चलने वाले हैं, उनके दिखाई हुए मर्यादा का हमेशा पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने.
0: जी, बट हाउ विल द कांग्रेस बी टेकिंग दिस मूवमेंट फॉरवर्ड सर व्हेन इट कम्स टू द अयोध्या डोनेशन थेफ्ट राव?
1: देखिए, ये सभी लोग उसमें, जो छोटे लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े बड़े छोटे लोगों को जेल भेजा गया, बड़े लोगों को बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, नीपेंद्र मिश्रा, और आप गोविंद्र गिरी, ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने ही ये सारा काम छोटे लोगों से कराया है. छोटे लोगों को आपने जेल भेज दिया. योगी जी से जरा पूछिए कि वो जो आठों लोगों का पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं लिया अभी तक? रिमांड लेना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी. पूछाया उनको, जेल भेज दिया आपने. अब छोटे छोटे मामले में तो रिमांड लेती है पुलिस, आपने 14 दिन के जेल भेज दिया. इससे साबित होता है कि पूरे लोगों को ये योगी जी बचा रहे हैं, और जिनको जितना हजारों हजार रुपये का जो घोटाला हुआ है भगवान राम के दरबार का, चोरी हुआ है, वो सारे पैसे ये ऊपर तक गए हैं. इसकी जाँच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट से, जज से जाँच होनी चाहिए, हमारी मांग है. ये हम पहले से भी कह रहे हैं, फिर ये बात कह रहे हैं.
0: Right, Mr. Rai, thank you for joining me on the phone line there. In fact, the Congress State Chief, Mr. Rai, who we were just speaking to, has claimed that the delegation which has to visit Ram Temple today has been put under house arrest and has been confined to the hotel. The proposed visit was scheduled amid the ongoing controversy over alleged embezzlement of funds at the Ram Temple. Targeting the BJP, he has said that the Uttar Pradesh government has got scared and had him arrested to prevent the delegation from going to Ayodhya. The nine-member delegation comprises State Congress President Ajay Rai, MPs Kishori Lal Sharma, Rakesh Rathore, Ujjwal Raman Singh and Tanuj Punya, MLA Virendra Chaudhary, former MP AP Gautam, former MLC Deepak Singh and former MLA Meeta Gautam are part of that delegation.
2: हम लोगों को कल रात से ही, हमारे साथियों को, हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में. एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया. क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी. और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30-11 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है, और पूरी तरीके से यहां प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है.
3: सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले. हम लोग भी आकांक्षी हैं, और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी. अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है, अगर बड़ी मछलियों को, अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसा बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है, और इस पाप का दंड भी मिलेगा.
4: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है? तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब, ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं. ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन. तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए. राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है. कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं?
5: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है। उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
0: Like I said earlier, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has slammed the Samajwadi Party, saying it holds the Babri ideology. He added that Ram Rajya will soon prevail and now it's time for Banke Bihari. Meanwhile, Akhilesh Yadav, speaking exclusively to NDTV, said faith of millions of devotees is being trifled with and added that there is no religion or shame in BJP's dictionary. Further, he attacked BJP, saying they will loot Kashi and Mathura too. Also, AIMIM Chief Asaduddin ओएसी हैज स्लैम्ड द बीजेपी गवर्नमेंट।
6: भाई प्रभु श्रीराम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको परेड अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
7: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
8: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
9: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं, यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला इसमें कौन सी राजनीति है, कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो, जो लोग इसमें शामिल हैं वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति है।
10: सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के और सब हम इस चीज को खत्म कर देंगे तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली जब तक सहमति ना हो। तो इसको लेके जो है बहुत दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है ये मामला, और बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। ऐसी सार्थक जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग पकड़े जाने चाहिए जो जो है जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं उन सबको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए।
0: News just coming in, the police have tightened their grip on the relatives of the 8 accused in the Ayodhya donation theft row, and the police have issued notices to approximately 140 people related to the 8 accused. They were asked to appear with their bank statements and property details as soon as possible. We have Ajay Rai back with us. We have Ajay rather back with us on the story. Ajay, just a quick word on the simultaneous raids that have been conducted also at the homes of the 8 accused in the Ram Temple donation theft case, because they're trying to widen and track down the money trail.
11: Definitely, see, this thing we have informed how in this case when police started doing their investigation, they have reached to the houses of all the 8 accused. They are in jail, but police is doing investigation, and while asking questions to their family member, what the police is targeting is to get more and more detail regarding their financial condition, not just their family members but their friends, with their close relatives, because police is not getting any cyber detail regarding these accused. They have deleted their WhatsApp, they have deleted their financial details in mobile. So police is also trying to get more and more names, and they are trying to get more and more detail on this case. Police is asking questions to their neighbors also to get the detail, how their life changes, how financially they are doing, and who all are very close allies to them. So they have profiled few of these characters, and they're asking, they're about to ask them questions, they're about to call them out and ask questions regarding the financial development. So this is what they're trying to do, to get more and more details about this case from the accused.
0: All right, Ajay Dubey, thanks for joining me live. Meanwhile, let's just bring you the latest into the investigations into the alleged Ram Temple donation theft. Well, like I said, the probe is widening. As per sources, former Trust General Secretary Champat Rai has recorded his statement before the police denying any role in the alleged theft. Sources say he maintained that he acted immediately after learning about the missing offerings, ordered action against the accused. Meanwhile, the main accused, Lovekush, is under the scanner after investigators found he allegedly transferred cash into his wife's bank account. That's the reason why you have that net also widening and the relatives also under the scanner. The investigation has also raised serious questions over the hiring of outsourced staff. According to sources, Ayodhya police have filed an application to interrogate some of the accused in jail, but the court has not yet granted permission. Well, the Ram Mandir donation theft probe is widening, with investigators expanding the list of people under scrutiny. Police have now recorded the statement of former Trust General Secretary Champat Rai as part of the ongoing investigation. Sources say the next round of questioning could include former Trust official Anil Mishra and accounts officer Gopal Rao. But the probe doesn't stop there. Investigators are also preparing to question nearly 140 others, including Trust members, priests, bank staff, as they examine the movement of donation funds and establish individual roles. With more statements yet to be recorded, the investigation is now entering a critical phase, and adding to the list are the family members of the 8 accused. Well, Padmaja Joshi from NDTV has spoken with VHP Chief Alok Kumar on the theft probe. Listen in.
12: So what happens from here on? Joining us also is the world president of the Vishwa Hindu Parishad, the Alok Kumarji. Thank you very much, sir, for speaking to us. I want to start by asking you, of the investigation so far, are you satisfied?
13: Well, yes. The police inquiry has started. The 8 persons named in it have been arrested. Some things have been recovered from them. And I would call it only a beginning, because the FIR itself says these 8 persons, the persons who were named in the SIT report and others. The FIR also requests that the entire spectrum, a comprehensive inquiry should be made, which in my understanding means that all the allegations that have appeared on social media against whosoever are to be probed. So the beginning is good, but the substantial is to happen.
12: Are you referring to the fact, what many other people have also said, that it's not just the small fish, the small fry who should be investigated, the big fish shouldn't be allowed to get away? Do you think there are bigger fish also who are involved in this?
13: I agree with you. The small fish, the big fish. Not only the rooks, but Raja and Wazir of the Rama Janma Bhumi place, all should be investigated. All allegations should be investigated. Anything less than that would not inspire public confidence. So therefore, the inquiry is to cover the whole thing.
12: By Raja and Wazir, do you mean people like Anil Mishra and Champat Rai?
13: I would say all persons against whom some complaints have been made. And that obviously would include these two also.
12: It's very reassuring to hear you say that, because again and again, the one allegation being made is that this is more a cover-up than an investigation. But you are saying that right from

0: मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसे आप बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा।
1: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है। तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब है, ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं। ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं?
2: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है। उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
3: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched yet another sharp attack on the opposition parties, accusing them of changing their stance on matters of faith and heritage. He said that the opposition appears unsettled by the rapid developments of religious centers like Ayodhya and Kashi. Akhilesh Yadav, meanwhile, has spoken exclusively to NDTV and said faith of millions of devotees is being trifled with, and added that there is no religion or shame in BJP's dictionary. Further, he attacked BJP, saying they will loot Kashi and Mathura. Also, AIMIM chief OSC has slammed the BJP government and said, and I quote him here, if accused had been Muslims, their houses would have been bulldozed, but no action is being taken against Champat Rai.
4: वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
5: मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जाँच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेम्बर हैं और आप ट्रस्ट की जाँच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।
6: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
7: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं। यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला, इसमें कौन सी राजनीति है? कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें शामिल हैं, वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति है।

0: people who have made us to sit here and to provide them justice.
1: आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षाचा माझा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ बघा
0: आणि 2.5 इयर्स ऑफ माय चीफ मिनिस्टरशिप
1: म्हणून पुढे चाललो आहे. आज शेतकरी
0: असो हाउ महाराष्ट्र वेंट अहेड,
1: लाडक्या बहिणी असो युवा असो
0: प्रत्येक फार्मर्स लाडकी बहीण एव्हरीवन हॅज बीन प्रोवाइडेड जस्टिस.
1: म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षांमधला जर आपण महाराष्ट्राच्या कामांचा इतिहास बघितला, विकासाचा वेग पाहिला,
0: if you see the pace of work in Maharashtra in the last 4 to 5 years,
1: ते समोर आपले आहे. मुंबईतलेच बघा, कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो,
0: look at Mumbai's coastal road, अटल सेतू, महामार्ग, मेट्रो
1: असलेली नावं आहेत, परंतु महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये
0: these are not just names.
1: या महाराष्ट्राचा विकास होतोय, एक डबल इंजिनचं सरकार या राज्यामध्ये,
0: but a representation of the success of our project, of the double engine project,
1: पाठिंबा देत आहेत, सपोर्ट करतात.
0: Prime Minister Narendra Modi is also giving us important support from the center.
1: UPA सरकार मध्ये पूर्वीच्या UPA सरकारने 2 लाख कोटी दिले होते.
0: Earlier during UPA government they gave us 2 lakh rupees.
1: 12 लाख कोटी रुपये दिले. शेवटी
0: Prime Minister Modi has given us 12 lakh crore rupees.
1: सरकार आमचं काम करते.
0: The double engine government is working for the people.
1: या राज्याचा विकास आम्ही करतोय.
0: And that's how we are helping the state progress.
1: Infrastructure, skill development, connectivity, skill, manpower, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत.
0: Different kinds of peers are getting developed in Maharashtra.
1: राज्य पुढे जाते आणि म्हणून लोकप्रतिनिधींना काय पाहिजे?
0: What do people's representatives want?
1: त्यांच्या मतदार संघातल्या लोकांना न्याय देण्याची आवश्यकता.
0: They want development. They want to give justice to their own people.
1: आणि म्हणूनच काही लोक मग गेला की त्याच्याबद्दल काय काय चर्चा होती आहे ती आपल्याला माहित आहे.
0: We know what people talk about people's representative when they leave their party.
1: असं जे काही सुरू आहे आणि आताही
0: काही use bad names for us.
1: काय काय म्हणतात त्याच्यावर मी काय बोलू इच्छित नाही.
0: I don't want to talk about it.
1: मी आपल्याला एवढं सांगतो.
0: All I want to tell is,
1: आम्ही ज्या पद्धतीने पुढे जातोय,
0: we are going ahead.
1: अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे जातोय.
0: It is taking development as agenda
1: बदल घडवण्याचा एक
0: to bring about some sort of change in a common man's life.
1: विकास अधिक जोमाने कसा होईल हे ही भूमिका घेऊन पुढे जातोय.
0: To fasten up the development of Maharashtra. That is our agenda.
1: आणि म्हणूनच मी आज सचिन अहिर यांचं मनापासून अभिनंदन करतो.
0: आय विश सचिन अहिर ऑल द बेस्ट.
1: त्यांना शुभेच्छा देतो. मगाशी माझं
0: आय गिव हिम ऑल द विशेस.
1: माझं सचिन तेंडुलकर असताना खरं म्हणजे ते अष्टपैलू आहेत, बॅटिंग बॉलिंग सगळं करतात ते.
2: गुगली पण
1: सांभाळतो.
0: आणि जस्ट लाईक सचिन तेंडुलकर हू बॅट्स अँड बोल्स अँड ऑल्सो बोल्स अ गुगली.
1: आज गुगली टाकलेली आहे.
0: He has thrown a googly today.
3: All right, that's Deputy Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde taking a press conference after Sachin Ahir joined Sena. In fact, Sachin Ahir was an important leader of UBT Sena. This is a huge setback. Of course, Shinde there talking about how Ahir is a grassroots leader nominated as Deputy Chairman of MLC and that Mahayuti has become stronger in assembly as well as council and strength of Mahayuti will only increase, and then talking about all the welfare measures and developments of measures of Mahayuti government as well and how it has in fact benefited the state of Maharashtra. Let's also take a look at more breaking updates coming in as far as this developing story is concerned. Aditya Thackeray has spoken on Sachin Ahir joining Eknath Shinde Group as deputy chairperson. He says this is not Operation Tiger. This is Operation Devendra Fadnavis. He also goes on to say this will not impact them if anyone is moving from UBT party. Aditya Thackeray has reacted on his loyalist Sachin Ahir joining Eknath Shinde Group. Let's go straight across to Anuj on this. Anuj, of course, this is a huge setback for UBT, no doubt about it. Eknath Shinde has spoken. He has... Before that, let's take a look at what Aditya Thackeray has said.
4: करीबी हो करीबी ना हो,
2: बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पर चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ के जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था, अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है।
3: Anuj is joining us on this. Anuj, of course, huge setback, as we were pointing out before, for UBT Sena, one of their loyalists, Sachin Ahir, joining Eknath Shinde's Sena. Take us through the reactions and counter-reactions. We just heard Eknath Shinde there welcoming Sachin Ahir and also talking about welfare measures of Mahayuti and how Mahayuti is only going to get stronger. But Aditya saying that this is not going to impact them.
0: Rajika, this is a huge setback for Shiv Sena for multiple reasons. Of course, Sachin Ahir, in terms of optics, is just an MLC. But if you look at his position in UBT, he was considered to be one of the core Shiv Sena UBT leaders. When we speak about Shiv Sena UBT, we have to speak about Mumbai. And in Mumbai, there were at least half a dozen those leaders besides the Thackeray family who were very crucial for the development of the party. You've got your Parabs, you've got your Desais, you've got your Savans, and Sachin Ahir was also considered to be one of them, which is why this loss is so massive. But what Aditya Thackeray has said while reacting to it is very interesting. One thing that we have gotten or that we've picked up from different leaders of UBT is that none of them expected this to happen. They've been talking to Sachin Ahir for a long time. Be it Aditya Thackeray, who mentioned a conversation he had with Sachin Ahir only yesterday, or other leaders who spoke to him literally today morning. But one thing that Aditya said is that he basically reiterated on a point made by his father earlier this week, wherein Uddhav Thackeray spoke about how this is not Operation Tiger, and people who are thinking of this to be Operation Tiger are mistaking it. This is Operation Devendra Fadnavis. This is an attempt by the Chief Deputy Chief Minister Eknath Shinde to corner Devendra Fadnavis by getting as much of manpower, as much of resources under his wings as possible. And that exactly has been reiterated here by Aditya Thackeray once again. Because if you look at it, there was no need for Eknath Shinde to get Sachin Ahir on this particular occasion. As far as the MPs are concerned, one might still give a rationale about how it was required for NDA to create a two-third majority, which is why it was easier to justify that, right, at least for the NDA's perspective. But there was
3: right.
0: no
3: Anuj,
0: tangible...
3: As you've been pointing out, you're saying that this is another attempt by Eknath Shinde to strengthen his position within Mahayuti, and Aditya saying that this is not Operation Tiger, this is Operation Fadnavis. Of course, this is a setback for Uddhav Thackeray, senior leader, and Aditya Thackeray loyalist Sachin Ahir has joined Eknath Shinde-led Shiv Sena. Not just this, he's also been nominated for the post of deputy chairperson, marking a major boost for Shinde's camp and further intensifying ongoing political churn within Maharashtra politics. State Minister Sanjay Shirsat hailed Ahir's entry, calling him a hard-working leader and saying more leaders are joining voluntarily under Shinde's leadership. Congress leader Amin Patel admitted the move came as a surprise, saying Ahir had attended an MVA meeting just days ago. However, Patel maintained that while Ahir was an important Mumbai leader, no single individual can make or break Mahavikas Aghadi.
4: Sachin Ahir ek acche gaddawar neta hai. Wo bahut dino se Ubata party mein aswastha the, unko wahan kaam karne ki ichcha nahi thi. और उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में बहुत दिनों से थे, लेकिन सही वक्त पे सही डिसीजन लेना ये एकनाथ शिंदे साहब की खूबी है, इसलिए आज उन्होंने वो डिसीजन लिया और सचिन आयर को उपसभापति पद का दावेदार बताया।
5: सर, कल तक महाविकास आघाड़ी के नेता बोल रहे थे कि सचिन आयर उनके साथ बैठे हुए थे, उनको भनक भी नहीं लगी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती, तो ऐसी क्या चीज़ ऑफर की गई थी जिसकी वजह से वो अचानक से शिवसेना में आ गए एक रात?
4: ऐसे ऑफर दिए नहीं जाते और ऐसे ऑफर बताए भी नहीं जाते। अचानक करने वाला इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं था और एकनाथ शिंदे साहब परफेक्ट ऑपरेशन करते ये महाराष्ट्र ने देश जानता है और उसी तरीके से उन्होंने आज वो ऑपरेशन किया है।
6: दो रोज़ पहले सचिन आही साहब मेरे बाजू में बैठे हुए थे एमबीए की मीटिंग में, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो निर्णय ले सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सचिन आही साहब ने ये डिसीजन लिया है, वाकई आश्चर्य की बात है।
5: क्या ये महाविकास आघाड़ी को एक तरीके से सिस्टमेटिकली डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश है महायुति की तरफ?
6: बिल्कुल, इसी तरह से सचिन आही जैसे लीडर का बड़े अफसोस की बात है ये।
5: अपोजिशन के लिए मुंबई में ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि वरेली के काफ़ी बड़े चेहरे की तरफ से उनको
6: एक्सल में वो शिवसेना यूबीटी के साथ में थे, वर्ली के अंदर उनका वर्चस्व था, मगर कोई भी एक आदमी के आने जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है।
7: इनिशियली मिस्टर सचिन भाई ही वॉज विथ आर पार्टी, देन ही वेंट टू उद्धव ठाकरे शिवसेना, नाउ ही हैज गॉन टू एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना। बट यू नो इफ दिस सच थिंग्स हैपन कंटिन्यूअसली वेदर इन केस ऑफ MLAs और MPs, दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। तो नाउ इफ पीपल हैव इलेक्टेड दीज पीपल बेस्ड ऑन द पार्टी व्हाट दे रिप्रेजेंट, द थॉट प्रोसेस व्हाट दे रिप्रेजेंट, एंड लेटर ऑन यू जस्ट पोस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ मनी और पावर, दिस इज नॉट राइट।
8: सचिन ने जिस तरह से सिंधे सेना में वो सने की तरफ से जो फॉर्म भरा है, उसका मतलब ये है कि सरकार का इंटरेस्ट फोड़ा फोड़ी में ही है और उसी में सरकार का इंटरेस्ट चल रहा है। मूल सब्जेक्ट ये है कि जिस तरह से जो खेल चल रहा है खरीद फरोख्त का, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये शौफुले अंबेडकर विचारधारा का ये महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त में ही विश्वास रखने वाली जो सरकार है वो सरकार के बारे में देश राज्य की जनता ही निर्णय लेंगी, इतना ही हम कहेंगे।
9: जो शिंदे साहब जो उन्होंने राष्ट्रीयत्व मतलब हिंदुत्व का रास्ता चुना है वो बाला साहब जो ठाकरे का ही रास्ता है, और केंद्र सरकार में NDA के साथ में नरेंद्र मोदी साहब ने जो भूमिका ली है विकास की, सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ साथ सबको सम्मान देने की भूमिका निभाई है, विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शिंदे साहब शिवसेना को महाराष्ट्र धर्म निभाने के लिए सचिन अहिर जी को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। और
3: With that, it's a wrap on this bulletin. We'll be back with more news and updates. Stay tuned with NDTV.

0: of anything. In fact, he says Sia was confused about how to define her friendship with Chetan and said that she had nothing to do with Chetan anymore, that friendship was over, that she wanted now to be with Ketan Agarwal. Listen in to this interview.
1: साहिल, आप अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आप परसों मेरी जानकारी के हिसाब से आपको पुलिस ने बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। कितने देर ये स्टेटमेंट चला और क्या आप कानून को सहयोग कर रहे हो?
2: मेरा स्टेटमेंट 10 से 12 घंटे चला। मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी।
1: तो फिर भारत की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते, या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के, पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से, और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है? कि आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशनशिप को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
2: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ, उनके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ, सबके साथ, गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पर बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बताकर क्या करता, किसको क्या करता?
1: तो पेरेंट्स को कभी बताया नहीं आप?
2: ये बात मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई सर।
1: कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या दोस्ती थी उनकी?
2: दोस्ती ही थी सर। जब उन्होंने भी मुझे जब बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ।
1: मतलब रिलेशनशिप नहीं है?
2: रिलेशनशिप मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि मैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर टुगेदर, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, वी माइट गेट एंगेज, वी माइट गेट मैरिड।
1: So it was not a conviction or it was not a confirmation about a relationship.
2: It was confusion, sir.
1: It was a confusion.
2: Yes, sir.
1: It was a state of confusion. कि भाई क्या चल रहा है?
2: Which to which I also said, you are very young at age. It is okay. लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं. It is okay. Whatever you decide. अगर आपने मुझे केतन को बोला है कि मुझे केतन के साथ आगे जाना है, it is okay. It will be our secret. मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा।
1: और अगर वो कहती कि चेतन के साथ आगे जाना है,
2: तो ये बात हम पेरेंट्स के सामने आगे लेके आते थे, हम उनको बोलते थे, हम ये सगाई तुड़वा देते थे सर।
1: तो आपने किसी को भी, रिश्तेदारी में किसी को भी नहीं बताया?
2: किसी को भी नहीं,
1: माँ बाप को भी नहीं कभी? कानून के साथ आप जो परसों गए, कोई ऐसी चीज़ जो, कोई नई चीज़ हो जो मीडिया में अभी तक नहीं आई?
2: जो स्टेटमेंट मैं आपको आज दे रहा हूँ सर, वही मेरी पुलिस स्टेटमेंट में सेम चीज़ है।
0: All right, so that was an exclusive interview with Sia's brother Sahil there, who spoke about how he was aware of the friendship between Chetan and Sia, but Sia had said that it was over. Let's go across to Anuj now for more on all these developments. And Anuj, this comes as the police are investigating the matter. Both the accused were even taken to the Lohagarh fort. But about Sia's family, because there have been questions raised about whether they were aware about Chetan and about whether she was being forced, you know, into this marriage. And now the brother is saying that she had ended her friendship and that she had told him that she wants to be with Ketan.
3: Obviously, we are getting, mixed signals here as far as Sia and her family's version is concerned. As far as the, source-based information that we have gathered from Pune immediately after this unfortunate incident of donating, we realized that the family was firstly not aware of this. And then we got to know that it was the brother who was actually the link between Chetan Chaudhary and Sia Goyal, because it was through a cricket tournament in which the brother and Chetan participated, and that is how Sia met. Later on, we are seeing a differing opinion now, wherein the brother states that Sia was actually confused as far as her approach with Chetan is concerned. But when we speak about police is going to take the police investigation, the police is going to take this with a pinch of salt, especially given the number of facts that they have in front of them. Yesterday, when the police custody, the first police custody ended, and when the two were presented in the court, the police were trying to establish the fact that the crime was not just a cold-blooded murder, but it was also a coordinated effort between individuals. Now, if what Sia's brother says is actually true, and if it is proven to be true, then all of the police investigation that the court also has stood by for the first couple of weeks will be contradicted, which is quite unlikely to happen. Which is why it is very interesting to see on what turn does the case take, given the fact that Sia's brother has come out with a statement making it very clear that Sia was, she

0: wanted to be with Ketan and she was confused about her relationship with Ketan. Because if that was the case, then the intent or the motive of the crime that the police has been so interested in looking for will become even more complicated going forward. You know that Sia's brother Sahil was interrogated on two different occasions for 10 straight hours. And in this interview, of course, he states that she presented the exact same facts in front of the police. But what exactly is it that the police are looking to get from him? And what is their deduction? What is their conclusion from whatever information or inputs they've gotten from Sia's brother? Is something that they'll elaborate on the next police custodial hearing.
1: All right, Anush, thanks so much for joining us with all those latest developments and reactions to that interview of Sahil's. Now, as the probe widens in the murder case of Ketan Agarwal by his fiancée Sia and her boyfriend Chetan Agarwal, Chetan Chaudhary, the police have taken the accused Chetan Chaudhary to Lohagarh Fort to recreate the crime scene. Earlier, Sia was taken to that very same spot. The police investigating the Pune realtor Ketan Agarwal murder case will conduct what is being described as a gait analysis of accused Chetan Chaudhary, that is how he walks, and are also planning to compare the CCTV footage that was captured, that captured his movements at the Lohagarh Fort with the recreated video. The police official says gait analysis is the study of a person's walking pattern, and it is used to identify suspects from CCTV footage by comparing distinctive characteristics. Now, as the investigation into Ketan Agarwal's murder uncovers what police believe to be a chilling digital trail, investigators claim the accused researched murder methods on Google and YouTube before allegedly executing the plan at Lohagarh Fort, which was to push Chetan down the gorge. Police now say the victim's fiancée, Sia Goyal, knew in advance the exact location where Ketan was allegedly to be pushed.
2: An extensive internet search, secret gestures, and a premeditated plot to kill. The Ketan Agarwal murder investigation has revealed stunning details. Police claim the accused extensively searched Google and YouTube for different methods of murder before allegedly finalizing a plan to push Ketan off Lohagarh Fort. Investigators say the online searches included questions about whether a fall from a height would be fatal and which method of murder would carry the least risk of detection. Police believe these searches were part of the alleged planning leading up to the crime. According to investigators, Sia Goyal held a meeting before the incident. It was during this meeting, police claim, that Sia was allegedly told about the exact location at Lohagarh Fort where Ketan would be taken. Police allege Sia knew precisely where she had to stand and from which direction Chetan would approach before allegedly pushing Ketan into the valley. Investigators believe this points to prior planning rather than a spontaneous act. At the time of the crime, a secret gesture was also agreed upon between Sia and Chetan to push Ketan into the deep ravine. Sources say that Sia was to sit down in front of Ketan, either to drink water or to tie her shoelaces, which was Chetan's final signal to push Ketan. The deliberate reason behind Sia's sit-down gesture was to prevent Ketan from grabbing her to save himself while falling. Digital forensic experts are now examining the mobile phone seized from the accused. Police are attempting to recover Google and YouTube search histories, deleted chats, and any messages that may refer to the alleged murder plan or the specific location at Lohagarh Fort. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
1: Now, the other big story, we're tracking the latest in the Ram Mandir donation theft case and the politics first. Congress State Chief Ajay Rai has claimed that the delegation, a Congress delegation, which was to visit the Ram Temple today, has been put under house arrest and has been confined to the hotel. Targeting the BJP, he said the Uttar Pradesh government got scared and had him arrested to prevent the delegation from going to Ayodhya. The 9-member delegation comprises State Congress President Ajay Rai, MPs Kishori Lal Sharma, Rakesh Rathore, Ujjwal Raman Singh to visit the temple. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath has slammed the Congress over these claims and stated that Congress never believed in Ram's existence.
3: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
4: अब कांग्रेस की बात मैं करना चाहूंगा
5: जी।
4: कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हम भगवान भक्त हैं, भगवान के इनकी तरफ अधर्मी नहीं है, दिखावटी नहीं है कि भगवान राम का पैसा खा गए, चोरी कर लिए। कांग्रेस दान हमेशा करती रही है, चाहे वो अपनी संपत्ति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे अपने पूरे जो समाज के लिए समर्पण है वो कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का चढ़ावा खा गई, चंदा चोरी कर गई, जमीन का घोटाला कर गई और गौ कसी, जो सबसे ज्यादा गौ कसी हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गौ का मांस बेचा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे है उसमें, ये उसका पैसा खा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे चढ़ावा चोर, ये चढ़ावा चोर लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के पूरा अंदर काला है इनका और ऊपर से गेरुआ वस्त्र ढके हुए हैं योगी जी, ये पूरे भ्रष्ट लोग हैं जो पूरे भगवान राम के मंदिर को या आज भगवान के राम के जन्म स्थान को इन्होंने बदनाम किया है, जहां भगवान राम जन्म लेकर जहां पे आज पैदा हुए उस अयोध्या को कलंकित किया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने भगवान राम का चोरी चोरी कर। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवान राम के आदर्श हम चलने वाले हैं, उनके दिखाए हुए मर्यादा का हमेशा पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने।
6: सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले, हम लोग भी आकांक्षी हैं और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है, अगर बड़ी मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसे आप बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा।
7: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है, तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं, ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है, कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं।
8: मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को क्यों रोका गया, वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे, इसलिए राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए वापस हमारे साथ आ जाएंगे, ये कौन है राम मंदिर उनकी बात पे जाके रह गया।
9: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है, उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
10: भगवान का मंदिर ना बने इस बात की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया और आज चले हैं अयोध्या जी उपद्रव करने, तो प्रशासन ने अच्छा किया, और ज्यादा उपद्रव करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा, वहां उदंडता और उपद्रव के लिए कोई स्थान अयोध्या जी में नहीं है। और कांग्रेस जैसी घृणित मानसिकता के लिए तो और भी जगह नहीं है, इसलिए ये बेवजह का ड्रामा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इनका ड्रामा चलने उलने वाला नहीं है।
1: let's go across to Ranveer now, who's been tracking all these developments. And first and foremost, Ranveer, this Congress delegation claiming they're under house arrest, they're not being allowed to visit the Ram Temple.
5: Yes, of course. Congress leaders with Ajay Rai, four member of parliament and one MLA. They are those who are in Ayodhya, but they claim that police has taken custody. Ajay Rai, who is the president of UP Congress, he visited Ayodhya yesterday evening, and when Ayodhya police got to know that he is in Ayodhya, Ayodhya police requested him to return back to Lucknow because due to this controversy, the situation is not very favorable so that these political leader can do politics over this controversy. So Ajay Rai refused to do so, and then police taken him from the hotel to a guest house, and they are house arrest. And also 10 days back, Ajay Rai with some Congress leaders, he visited Ayodhya, he visited Hanumangadi as well as Ram Temple. And again, after 10 days today, they announced that a delegation of 9 leaders, including 4 member of parliament and 1 MLA, Ajay Rai will lead this delegation. And now they are criticizing BJP because this is a big chance for the opposition to attack Bharatiya Janata Party over Ayodhya issue. Till now, BJP was always attacking the opposition over several issues related to Ram Temple, but now the opposition has got chance, and that's why especially Samajwadi Party as well as Congress both are attacking Bharatiya Janata Party, and they are targeting that due to donation theft, BJP is under a scanner and BJP have to reply, and they are raising question that why they are not allowed to visit Ram Temple. They are just devotees. But obviously, in a span of 10 days, Congress leaders visited Ayodhya twice. So obviously, the question is why opposition is trying to show that they are the devotees and they are visiting Ayodhya twice in 10 days.
1: All right, Ranveer, thanks so much for joining us with those details. So the political showdown really intensifying over the Ram Mandir theft probe, and beyond the Congress delegation being stopped, UP Chief Minister Yogi Adityanath also launched another sharp attack on opposition parties, accusing them of changing their stance on matters of faith and heritage. He said the opposition appears unsettled by rapid developments of religious centers like Ayodhya and Kashi. Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, speaking exclusively to NDTV, said the faith of millions of devotees is being trifled with, and added that there is no religion or shame in the BJP's dictionary. Further, he attacked the BJP, saying that they will loot Kashi and Mathura as well. Also, AIMIM chief Owaisi has slammed the BJP government, saying that if the accused had been Muslims, their houses would have been bulldozed by now, but no action is being taken against the former trust head, Champat Rai.
3: What Congress, jo 2017 ke pehle Ram ke astitv ko hi nakar chuki thi, Shri Krishna ke astitv ko hi nakar chuki thi, aaj wo bhi kehti hai कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
11: मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है, क्या SIT की भी जांच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।
12: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर।

0: sono staccato al dente. बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
1: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं। यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला, इसमें कौन सी राजनीति है? कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें शामिल हैं, वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति है।
2: सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के और सब हम इस चीज को खत्म कर देंगे तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली जब तक सहमति ना हो। तो इसको लेके जो है बहुत दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है ये मामला, और बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। ऐसी सार्थक जाँच होनी चाहिए और ऐसे लोग पकड़े जाने चाहिए जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए।
3: दैट दिस गवर्नमेंट इज क्लीन, पीपल हु बिलीव्ड दैट दिस पीपल विल नॉट इंडल्ज इन करप्शन इन द नेम ऑफ गॉड हैव बीन लेट डाउन। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाज हु स्लोगन, मिस्टर मोदी स्लोगन, एंड वेर इज वेरी नो मन की बात ऑन दिस।
4: All right, so the opposition claiming that it's only the small fish so far who've been arrested. Remember, 8 have been arrested, but saying that the bigger names are being let go. Now, as far as the investigation into the alleged Ram Temple donation theft goes, it is widening. The scope is widening. The special investigating team is probing at the temple theft and will now question 140 others, including trust members, priests and bank staff. Now, according to sources, a former trust general secretary, Champat Rai, who's really been in the firing line in a sense, people really questioning his role in all of this. He recorded his statement before the police in which he denied any role in the alleged theft. Sources say he maintained that he acted immediately after learning about the missing offerings and claims that he ordered action against the accused. Also, the main accused, Lovekush, is under a scanner after investigators found he allegedly transferred cash into his wife's bank account. The investigation has also raised serious questions over the hiring of outsourced staff. And according to sources, Ayodhya police have filed an application to interrogate some of the accused in jail, but the court has not granted permission yet. All right, with that, we'll slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: Literally go from the man on the outside looking in, now to the man on the inside looking out.
11: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
10: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
11: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
10: What would that young man in India say if he could see you right now?
11: I'll be up there soon with you.

0: real issues of law and order. The own minister of TBK's cabinet is accused of having drugs in open public. So all these are the issues that the people want answer from the TBK government. The TBK government is not ready for discussion on these critical topics affecting the day-to-day life of the public of Tamil Nadu. They want to use their political allies as a kind of a henchman to attack DMK regularly, which these attacks are baseless. As far as the Vaiko issue is concerned, if not for DMK, his party would have been a history by now in Tamil Nadu.
1: Thanks so much for speaking to us. DMK spokesperson there, hitting out at Vaiko, saying that these are all comments being made to distract from other issues that are taking place in the state. This is after Vaiko said that the DMK government was a commissioned government. Well, let's move on now to some breaking news coming in. An exclusive interview with Sia Goyal's parent, Sia, who is accused of planning the murder of her fiancé, Ketan Agarwal. Her parents now have spoken out about how they did know that there was somebody. Chetan, remember, it is Chetan who is said to be was said to be her secret boyfriend, with whom she planned to murder her fiancé, Ketan Agarwal. Now Sia's parents have said that they did know that there was a Chetan, but we did not know that there was any sort of relationship. We only knew Chetan Chaudhary as somebody who was a friend of Sia's. These visuals that you're seeing are of a match that they had attended earlier, Chetan and Sia Goyal. Well, the parents are now speaking out on this. Earlier, the brother Sahil also said that Sia had told him that it was a friendship which was now over, and she was only focused on her marriage with Ketan. Let's listen into what the parents now have to say.
2: Ketan Agarwal prakaran mein kal आरोपी सिया गोयल के माता पिता को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया था. मेरे ख्याल में 9-9.5 घंटे तहकीकात हुई है.
3: हाँ जी.
2: आपने पूरा कानून को सहयोग दिया?
3: हाँ जी, पूरा सहयोग दिया और आगे भी दूंगी.
4: 12 घंटे तक चली है
2: जी. अब इसमें मैं आपसे कुछ और चीज़ें इस विषय में पूछना चाहता हूँ. काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग मीडिया की ओर से, लोगों की ओर से कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने न्यूज़ जॉन्स ने भी ब्रेक की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे भी इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जानना चाह रहा हूँ कि आप कहते आइए कि भाई सिया और चेतन के रिश्ते का आपको आइडिया नहीं थे, लेकिन अब पब्लिक में उनके फोटोज़, उनके दोस्ती के आ रहे हैं, तो क्या सिया चेतन दोस्त थे ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पज़ है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
3: दोस्त थे, वो भी जब मार्के एड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे. बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है.
2: रिलेशनशिप वाला नहीं,
3: रिलेशनशिप वाला नहीं था. अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है. ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में.
2: तो मैडम, ये अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं.
3: वो किस फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
2: मतलब
3: उदयपुर में. हाँ,
2: रिलेशनशिप में थे?
3: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया.
2: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
3: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का.
2: अच्छा, ये बात थी.
3: हाँ जी.
2: और फैक्ट चेक में कि भाई सिया बहुत ज़्यादा, मतलब पार्टीज़ में शराब पीना और ये सब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि मैं इस चीज़ को, हम लोग इसको अभी भी वेरीफाई कर रहे हैं, सत्य क्या है? क्योंकि एक माँ के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि अभी जैसे उसने पुलिस में भी ऐसा आ रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है.
3: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है.
2: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज़ के फोटो वीडियो भी. तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज इस टाइप की?
3: नहीं, पार्टीज वगैरह कुछ ऐसे बियर पी ये कुछ भी नहीं है।
2: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा, उसकी पढ़ाई को लेके क्या स्टेटस है?
3: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माजी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम की है करके,
2: और कल आप
3: इसीलिए उसने अपना केक वगैरह का चालू किया है।
2: तो केक का बिजनेस करती थी, केक बना के
3: होम?
2: अच्छा,
3: घर से करती थी,
2: ऑर्डर
3: घर से।
4: बीच में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी,
2: कई बार घर से
3: ही करती थी।
4: या प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना, और प्लीज बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके। तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कजन ब्रदर हो गए, कजन सिस्टर्स हो गए, या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था, और कुछ दो चार पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता।
2: मैं वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया, या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
3: नहीं, हमारी
4: तो कभी नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई है करके। और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं, ये रिश्ता यानी कि
2: संधि से बात होने वाले संधि से बात
4: होने वाले संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक ख़त्म हो जाता था कि ये
2: आपको नहीं, लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
3: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
2: या और कोई लड़का मेरे लाइफ में है।
3: नहीं, उसने कभी नहीं बताया। अगर वो बताती थी मुझे तो मैं आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
2: वापस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है, हम सभी जानते हैं, हमने जो दस्तावेज देखे हमारे हिसाब से भी वो आरोपी तो है, कल अगर वो दोषी हो जाती है अदालत में, एक माँ के तौर पे, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पे आप क्या कहेंगे?
3: मैं सबसे यही कहूँगी, अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती हो तो इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करके उसको फांसी की सजा दे दी जाए।
1: All right, so Sia's parents there speaking out. Let's go across to Anuj for more. And Anuj there as well. The parents, you know, admitting they knew the existence of Chetan, but that he was just a friend is what their understanding was.
5: Well, yes. And as we spoke about it earlier, the only member of Sia's family who was well aware of not just Chetan Chaudhary, but also about, probably had a bit of hint of the relationship between Chetan and Sia was Sia's brother Sahil. But what the parents have stated is that they were only aware of the existence of the Chetan Chaudhary, but didn't really have any idea about the nature of this relationship that was shared between the two. Whether it will play any sort of any role in probably helping the police or doing it otherwise is very unlikely, because this does not really sit in the way the police are carrying out the investigation. But what this does is that this, as we also spoke about it earlier, this puts more light on Chetan Chaudhary more light on Sahil, Sia's brother, because Sahil was the individual who was firstly aware of Chetan, probably had some sort of friendship with him too, and secondly, he was aware of the nature of the relationship between Sia and Chetan. So could he have avoided this either through interpersonal communication or by sharing the matters with the family? Something that the police would definitely like to look into.
1: All right. Thanks so much, Anuj, for joining us with those details. With that, we'll sip into a short break. More coming up on the other side.

0: रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया।
1: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
0: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का।
1: अच्छा, ये बात थी।
0: हाँ जी।
1: और फैक्ट चेक में कि भाई सिया बहुत ज़्यादा मतलब पार्टीज़ में शराब पीना और ये सब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि मैं इस चीज़ को हम लोग इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं, सत्य क्या है? क्योंकि कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है।
0: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने बताया है, पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है।
1: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज़ के फोटो वीडियो भी, तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज़ इस टाइप की?
0: नहीं, पार्टीज़ वगैरह कुछ ऐसे बियर पी ये कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा।
0: हाँ,
1: उसकी पढ़ाई को लेके क्या स्टेटस है?
0: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माजी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम की है करके।
1: और कल आप
0: इसीलिए उसने केक अपना केक वगैरह का चालू किया है।
1: तो केक का बिजनेस करती थी, केक बना के
0: होम?
1: अच्छा,
0: घर से करती थी,
1: ऑर्डर
0: घर से।
2: बीच में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी
1: अच्छा, कई बार घर से
0: ही करती थी।
2: या प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना और प्लीज़ बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके। तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कज़न ब्रदर हो गए, कज़न सिस्टर्स हो गए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था और कुछ दो चार पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता।
1: मैं वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
0: नहीं, हमारी
2: तो कभी नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई है करके, और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं ये रिश्ता, यानी कि
1: संधि से बात होने वाले संधि से बात
2: होने वाले संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक ख़त्म हो जाता था कि ये
1: आपको नहीं, लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
0: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
1: या और कोई लड़का मेरे लाइफ में है।
0: नहीं, उसने कभी नहीं बताया। अगर वो बताती थी मुझे तो मैं आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
1: वापस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है, हम सभी जानते हैं, हमने जो दस्तावेज देखे हमारे हिसाब से भी वो आरोपी तो है, कल अगर वो दोषी हो जाती है अदालत में, एक माँ के तौर पे, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पे, आप क्या कहेंगे?
0: मैं सबसे यही कहूँगी, अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती हो तो इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करके उसको फांसी की सजा दे दी जाए।
1: साहिल, आप अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आप परसों मेरी जानकारी के हिसाब से आपको पुलिस ने बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, कितने देर ये स्टेटमेंट चला और क्या आप कानून को सहयोग कर रहे हो?
3: मेरा स्टेटमेंट 10 से 12 घंटे चला, मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी।
1: तो फिर भारत की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है? क्या आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशन को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
3: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ, उनके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ, सबके साथ, गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पे बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बता

0: पॉलिटिक्स करता है, जनता की सेवा करता है। मित्रों, मैं मानता हूं आज हम यहां पर जब आए हैं और आने वाले समय में, पिछले जब से यह सरकार 2023 में बनी, तब से जिन वादों के साथ यह सरकार आई, इस सरकार को जनता की चिंता नहीं, अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों की चिंता है।
1: All right, so that is what the BJP president said earlier about Rahul Gandhi being a part-time politician. For the moment now, we're slipping into a short break. More coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आरती और मसाला।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों। This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
9: so many attacks,
8: the chaos and cries of Disaster Zone,

0: ये कि भाई सिया और चेतन के रिश्ते का आपको आइडिया नहीं थे, लेकिन अब पब्लिक में उनके फोटोज उनके दोस्ती के आ रहे हैं, तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे, क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
1: दोस्त थे वो भी, जब मार्केट की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे। बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है।
0: रिलेशनशिप वाला नहीं,
1: रिलेशनशिप वाला नहीं था। अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में।
0: तो मैडम ये अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो
1: हाँ
0: आपने
1: जी,
0: देखा,
1: हाँ जी,
0: लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे हमारे सूत्रों के हिसाब से, ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए
1: नहीं,
0: हैं।
1: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ
0: अच्छा,
1: मिले थे वो लोग
0: मतलब
1: उदयपुर
0: आप
1: में। हाँ

0: भी वेरीफाई कर रहे हैं सत्य क्या, क्योंकि एक माँ के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि अभी जैसे उसने पुलिस में भी ऐसा आ रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है।
1: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने बताया है, पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है।
0: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज के फोटो वीडियो भी, तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज इस टाइप की?
1: नहीं, पार्टीज वगैरह कुछ ऐसे बियर पी ये कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा। हाँ, उसकी पढ़ाई को लेके क्या स्टेटस है?
1: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माजी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम की है करके।
0: और कल आप
1: इसीलिए उसने अपना केक वगैरह का चालू किया है।
0: तो केक का बिजनेस करती थी, केक बना के
1: होम?
0: अच्छा,
1: घर से करती थी,
0: ऑर्डर
1: घर से।
2: बीच में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी
0: अच्छा, कई बार घर से
1: ही करती थी।
2: या प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना और प्लीज बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके। तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कज़न ब्रदर हो गए, कज़न सिस्टर्स हो गए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था और कुछ दो चार पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता।
0: मैं वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
1: नहीं, हमारी
2: तो कभी नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई ये करके, और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं ये रिश्ता, यानी कि
0: संधि से बात होने वाले
2: संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक ख़त्म हो जाता था कि ये
0: आपको नहीं, लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
1: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
0: या और कोई लड़का मेरे लाइफ में है।
1: नहीं, उसने कभी नहीं बताया। अगर वो बताती थी मुझे तो मैं आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
0: वापस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है, हम सभी जानते हैं, हमने जो दस्तावेज देखे हमारे हिसाब से भी वो आरोपी तो है, कल अगर वो दोषी हो जाती है अदालत में, एक माँ के तौर पर, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबसे यही कहूँगी, अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती हो तो इस केस को जल्द से जल्द खत्म करके उसको फांसी की सजा दे दी जाए।
0: साहिल, आप अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आप परसों मेरी जानकारी के हिसाब से आपको पुलिस ने बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, कितने देर ये स्टेटमेंट चला और क्या आप कानून को सहयोग कर रहे हो?
3: मेरा स्टेटमेंट 10 से 12 घंटे चला, मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी।
0: तो फिर भारत की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है कि आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशन को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
3: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ, उनके जो फोटोग्राफर्स है उनके साथ, सबके साथ, गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पर बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बता कर क्या करता, किसको क्या करता?
0: तो पेरेंट्स को कभी बताया नहीं आप?
3: ये बात मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई सर।
0: कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या दोस्ती थी उनकी?
3: दोस्ती ही थी सर, जब उन्होंने भी मुझे जब बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ।
0: मतलब रिलेशनशिप नहीं है?
3: रिलेशनशिप मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर टुगेदर, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, वी माइट गेट एंगेज, वी माइट

0: एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।
1: Now, people are raising questions about, you know, whether this SIT or the investigation which is going on, is it only looking at the small fish? What about the people, those who were in charge of the trust? One of them, of course, Mr. Champat Rai, the General Secretary, the former General Secretary, if I may call him now, because he has resigned. And he was questioned by the SIT. So what did he say? What did he tell the police? Let me tell you that as well. Sources have told us that he has denied any role as far as the donation theft is concerned. He said that my complaint has triggered the arrest. But as I said, it's not something that happened in June this year. These allegations have been made for a very, very long time. What was the trust doing in all those years? He said he's responsible for overseeing donation collection. He moved swiftly after learning about the irregularities, and he took prompt action against the alleged wrongdoings. That is what he has claimed in his defense as the pressure continues. Now, the Congress Party chief of Uttar Pradesh has slammed Yogi Adityanath. This is breaking news coming in. Remember, Ajay Rai went to Ayodhya. He wanted to go, in fact, and protest there. He said that he wanted to go to Ram Mandir for darshan. Now, Ajay Rai, as per him, was detained by the police. Now, he has said that the BJP government's duplicity has been exposed. I am locked up in a guest house, not allowed to visit the Ram temple. Others are getting VIP darshan. Why is it that I am not being allowed? As a devotee of Lord Ram, why am I being stopped is what Ajay Rai is claiming at this moment, that the government is not allowing him to go to the Ram temple. Let's listen in.
2: ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाज़ा सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है और ये बाहर के कौन है और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा VIP सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन किशोरी लाल जी, उज्ज्वल रमण जी, राकेश राठौर जी और तनुज पुनिया जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य दीपक सिंह और हमारे साथी AP गौतम जी और हमारे वर्तमान के विधायक बीरेन्द्र चौधरी जी, हमारे साथी और भी साथी मीता गौतम जी जो पूर्व हमारी विधायिका हैं, उन सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी शुक्रिया, धन्यवाद।
1: Now, Ajay Rai, though he's from the Congress Party, he's saying that, you know, he went there as a devotee. Why is he not being allowed darshan? And this has triggered a big political storm. Let me just also play out some other reactions on this story.
3: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है? तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं? ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं?
4: मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी में, उस बारे में बात करेंगे इसलिए?

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूप

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
15: सो मेनी अटैक्स,
14: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज।
15: इट्स इनक्रेडिबल।
14: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right and Center.
14: Hard facts.
15: War struck country.
14: Hard questions.
15: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
15: North Ukraine.
16: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
16: France.
15: Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom. Only on NDTV.
17: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
18: Literally go from the man on the outside looking in, now to the man on the inside looking out.
19: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
18: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
19: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to...

0: सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर अब ये दरवाज़ा सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के एक पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और ये बाहर के कौन हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं खड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा VIP सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन किशोरी लाल जी, उज्ज्वल रमण जी, राकेश राठौर जी और तनुज पुनिया जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह और हमारे साथी AP गौतम जी और हमारे वर्तमान के विधायक बीरेन्द्र चौधरी जी, हमारे साथी और भी साथी मीता गौतम जी जो पूर्व हमारी विधायिका हैं, उन सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जी। शुक्रिया, धन्यवाद।
1: मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे? इसलिए राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है राम मंदिर, उनकी बात भी जागी रह गया।
2: We have Radhika Kheda of the BJP. We have Vivek Silas of the Samajwadi Party. We have Sajjan Kumar, who's a political analyst, and Pankhudi Pathak of the Congress Party. Thank you, all of you, for being part of the show. Let me start with you, Radhika. You know, there was always this talk that there are CCTV cameras, there are audit systems. If all of this existed, how did this alleged embezzlement continue undetected? And if it did, clearly the opposition is completely sort of justified in asking the questions that it is asking today.
3: Good evening to everyone. Vasudha, let's cut through the noise. The opposition is trying to run a political circus over a theft, but they've completely tripped over the facts. Let's start about overlooking or hiding. On June 4th, who caught the irregularity? The trusted. Who went to the police and demanded a brutal impartial probe? The trusted. Within days, an SIT was formed by the government. 8 people have been put behind bars. Their custody has been extended and law is hunting down every single culprit. And like you rightly, and you just pointed out that even Champat Rai ji has been questioned. We're questioning everyone. 2 trustees didn't wait for a news debate. They resigned on moral grounds. That isn't a cover-up. That is accountability operating at lightning speed. Meanwhile, what is the opposition doing? They are behaving like political vultures. And they are shifting goalposts. First, they scream that the offerings were missing. When the trust placed the items right in front of the eyes and the SIT also proved that nothing is missing, they changed the script. Today, Supriya Shinde does a press conference and says, Sindhi Samaj aahat hai, ye hisab mang raha hai. The same Sindhi Samaj has gone on record to say that we just asked one man, he just asked for the receipt and that has been given. And no one has questioned ki chori hui hai. Please, they should...
2: But Radhika, in the midst of this, Ajay Rai's house arrest or what he's alleging or claiming, how is that justified on law and order grounds? Because that also sends out a wrong political message.
3: Ajay Rai wants to play the victim card by weaponizing routine security protocols because he wasn't allowed to turn a sensitive criminal investigation into a photo op. फोटो आप करनी है तो पहले राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं ना। राहुल गांधी ने तो कह दिया ये बीजेपी का मंदिर है। सोनिया जी कहती है राम जी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए बैटरी ऑफ लॉयर्स वाज प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट, द सेम सुप्रीम कोर्ट, एंड सेड कि नो राम, लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट, द मंदिर इज भारतीय जनता पार्टी मंदिर, दैट इज व्हाई राहुल गांधी टिल डेट हैज नॉट।
2: ओके, पंखुड़ी पाठक रिस्पोंड टू दैट,
3: ही डिड नॉट गो देयर, सो लेट इट बी ना।
2: पंखुड़ी पाठक
3: भक्तों के बीच में है, वो जवाब मिल रहे।
4: This is actually so unfortunate. In the past, we have seen BJP leaders and spokespersons defending rapists and murderers and looters of all kind. But the BJP going to the extent of defending people

0: अथॉरिटीज के पास कि ये एक रिस्क हो सकता है, ये पेड़ जो है ये ट्रिम नहीं हुए हैं, बार बार शिकायत दर्ज हुआ था, क्या ये सच है?
1: जी, वहाँ पर वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पर कंप्लेंट दी हुई थी। फिर हमारे स्थानिक एक MLA है, उनके पास भी ये कंप्लेंट दी थी PMC में। और यहाँ पर ये एक ही पेड़ नहीं, ऐसे बाजू के रोड में भी है, यहाँ पर सब पुराने पेड़ जो है जो ट्रिमिंग हुए नहीं है। और जो अभी ये 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले ही वहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया हुआ है उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहाँ पर उन्होंने कुछ भी वो रूट्स के ऊपर ही पूरे कंक्रीट डाल के रखा था। तो अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो फिर वो खराब होंगे।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये है दिवेश जी कि अगर अगर सिविक बॉडीज, अगर BMC ने कुछ काम किया था, अगर उन्होंने रिएक्ट किया, ये सारे कंप्लेंट्स जो सामने आए थे अगर वो रिएक्ट किए तो ये एक जान बच जाती, आज विहान का देहांत नहीं होता।
1: जी जी,
0: तो अब आप क्या करेंगे? फिर से चिट्ठी लिखेंगे BMC को,
1: क्योंकि
0: एक छोटा सा बच्चा चला गया है। अब
1: कल हम एक रेसिडेंशियल करके कल हम वार्ड ऑफिसर को एक निवेदन देने वाले हैं इस बात पे, और दोबारा यहाँ पर ट्रिमिंग हो जाए ये हमारी मांग है। क्योंकि यहाँ पर अभी ये रोड के बाजू में 3 स्कूल है, OLPS सेंट एंथनीज FX, उसके बाजू में कर्नाटक है, अपोजिट साइड में सरस्वती है। मतलब ये जो लेन है हमारा, यहाँ पर ही नियर बाय 100 मीटर्स पे ही 3 से 4 स्कूल्स है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते जाते रहते हैं। दोबारा ये घटना ना हुए इसीलिए हमने वापस कल दोपहर 11 बजे का हमने टाइम लिया हुआ है DMC से, और उन्हें उनको हम ये निवेदन देने वाले हैं कि दोबारा ये ट्रिमिंग की जाए। बारिश तो अभी 2-4 दिन से चालू हो गई है, यहाँ पर ट्रिमिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर सर ये तो घटना होने ही वाली थी।
0: मेरा आखिरी सवाल दीपेश जी, NDTV ने मुंबई के मेयर को कन्फ्रंट किया, उनको सवाल किया कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, बार बार इतने कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे आपके डिपार्टमेंट में लेकिन आपका डिपार्टमेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला है NDTV को कि वो जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कुछ नेग्लिजेंस या लैप्स हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ नहीं होगा?
1: देखिए, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, और अगर नहीं ले पाएंगे तो हम यहाँ के रेसिडेंशियल सारे मिलके वापस दोबारा मोर्चा निकालेंगे। क्योंकि एक जो बच्चा जिसका देहांत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो आज एक लौता बेटा था, 11 साल का बच्चा था। कल ये ना होवे कि कोई हमारे घर से हो जाए घटना, कहीं आपके घर से हो जाए, ये जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर्स की, गार्डन डिपार्टमेंट्स की, रोड डिपार्टमेंट की। यहाँ पर CC रोड्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो भी पूरा काम कंप्लीट नहीं है। आप अभी भी आप कल भी आ जाओगे दिन में तो भी मैं ये बताने के लिए रेडी हूँ कि कितने सारे रोड्स पे हर झाड़ के ऊपर इन्होंने सीमेंट कंक्रीट डाल के रखा हुआ है, हर झाड़ पे।
0: जी जी,
1: तो रूट्स तो वहाँ के मरने ही है।
0: दीपेश जी, हमसे और NDTV से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: कल से
0: जी जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि NDTV का रिपोर्टिंग जारी रहेगा इस मुद्दे पर, इस स्टोरी पर हम ध्यान रखेंगे और हम जस्टिस लाएंगे विहान श्रीवास्तव के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपेश। Meanwhile, something deeply disturbing is happening in the Siya Goyal case. Alongside the unfolding police investigation, viewer, a parallel campaign appears to have begun to soften the glare on the young woman accused of murdering her fiancé, Ketan Agarwal. It's a story that has taken the country by storm. It's happening at different levels, I don't know if you've noticed, by different stakeholders, all gently nudging the narrative away from the alleged crime and towards the accused herself, Siya Goyal, as a victim. Not a ruthless murderer, but a trapped young woman. not a privileged girl who allegedly chose a horrifying solution, but the pity

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।

0: of Mumbai. Sujata, the most shocking aspect of the death of young Vihan, who we mourn tonight along with his family, his friends, is that the residents of this area had repeatedly requested the BMC to trim or chop the trees because they were considered to be dangerous. Sujata.
1: Well, yes, and we have been on ground ever since the incident and the accident has happened. And let me tell you that after speaking to the residents as well as the officials that were present on ground, this is a catastrophic systemic failure because the BMC department, the garden department, it is essential for them before every monsoon to prepare for the upcoming rains. And today, after the situation that we saw in Mumbai, it was essential and the works that had been seen. But what we eventually got to know from the residents that all the complaints that they had made, all the letters that they had written only went into deaf ears. Because the BMC officials, they were least bothered. Their officers from the garden department were least bothered to be on ground and inspect the trees, the trunk decays, the root level problems, which eventually caused the tree to fall onto a bus. Now, on both these sides of the road, there were cars parked, which of course was not allowed and which shouldn't have been allowed, and which led to the bus having no way to move forward. And while the traffic continued, the tree, it fell onto the bus. We saw there were school bags, there were uniforms, there were sunglasses, there were glasses, there were books that were shattered within the bus. And of course, it belongs to these young children. When Vihan was got out from the bus, it was done with almost so much of delay, yes, with almost an hour delay. And the officials could have reached the spot sooner. But again, the cars being parked, the complaints of the residents not being addressed, which eventually became a reason that Vihan couldn't survive. Today, his parents are mourning his death. They are at Rajwadi Hospital till now to get the entire procedure completed. But again, question arises over where is BMC's preparedness at this given point in time? Because like every monsoon, this year too, we saw the officials giving huge claims that work is being done. But again, we don't see that happening on ground. Back to you.
0: This is truly shocking. This shows that this was not an accident, but this was murderous apathy and negligence, despite warnings, despite letters being written about these dangerous trees and the risk they pose to traffic. This tree collapsed on the school bus in which Vihan was traveling in, along with 12 other schoolmates of his, and he lost his life. That is the reality of what happened. In fact, Sujata continues to be with me. Deepesh Chavan, a local resident and an eyewitness to what happened, is also live with me tonight. Deepesh ji, aapka swagat hai. Ye bahut hi dukhad ghatna hai, jisme Vihan ka dehant hua hai is ghatna mein, Chembur mein. Aap the wahan par, kya hua tha exactly?
2: Ji, teen bachche, mujhe Sandesh Pawar karke, hamare ek bhai hai, cousin.
0: Ji.
2: Wo wahan se ja rahe the, to unka mujhe phone aa gaya tha. कि ऐसे ऐसे एक बस पे झाड़ गिरा है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाओ करके. तो हम लोग ने सब यहाँ से वहाँ पर निकल गए, तो सब यहाँ पर भागम दौड़ी होने लग गई थी. तो वहाँ से एक 10-12 बच्चों को वहाँ से निकाला गया. बस एक बच्चा जो था वो अंदर फंसा था बस के बराबर बैक साइड पे, वो बड़ा पेड़ गिरा हुआ था. तो फिर हमने वो निकल नहीं पा रहा था, इसीलिए फिर हमने दो क्रेन्स मंगाए उसके लिए. जो लोकल हमने फटाफट हमारे आजू बाजू में जो डेवलपमेंट चालू है, तो वहाँ से हमने वो क्रेन मंगा कर ले लिए. फिर वो क्रेन से उठाकर जब वो बस थोड़ी हिलने लग गई, तब फिर वो एक बॉडी अंदर से निकालने में कोशिश हमारी पूरी कंप्लीट हो गई. बस उसे बचा नहीं सके, बाकी जितने जन थे उनको हमने वहाँ से रेस्क्यू कर दिया था. और टाइम पर फायर वाले वगैरह पहुँचे थे, हमारे DCP साहब थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे चेंबूर के. तो सबने मिलकर वहां पर जितना कर सके हमने हेल्प कर दी वहां पर.
0: दीपेश जी, क्या ये सच है कि आपने
2: बहुत से यहां पर पेड़ है वो पेड़ का?
0: जी जी, दीपेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि आपने और इस इलाके के लोगों ने काफी बार शिकायत दर्ज की थी BMC के पास, अथॉरिटीज के पास, कि ये एक रिस्क हो सकता है, ये पेड़ जो है ये ट्रिम नहीं हुए हैं, बार बार शिकायत दर्ज हुआ था, क्या ये सच है?
2: जी, वहाँ पर वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पर कंप्लेंट दी हुई थी. फिर हमारे स्थानिक एक MLA है, उनके पास भी ये कंप्लेंट दी थी BMC में. और यहाँ पर ये एक ही पेड़ नहीं, ऐसे बाजू के रोड में भी है. यहाँ पर सब पुराने पेड़ जो है, जो ट्रिमिंग हुए नहीं है, और जो अभी ये 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले ही वहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया हुआ है उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहाँ पर उन्होंने कुछ भी वो रूट्स के ऊपर ही पूरे कंक्रीट डाल के रखा था, तो अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो फिर वो खराब होंगे।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये है दिवेश जी कि अगर अगर सिविक बॉडीज, अगर बीएमसी ने कुछ काम किया था, अगर उन्होंने रिएक्ट किया, ये सारे कंप्लेंट्स जो सामने आए थे, अगर वो रिएक्ट किए तो ये एक जान बच जाती, आज विहान का देहांत नहीं होता।
2: जी,
0: तो अब आप क्या
2: ये
0: करेंगे?
2: गलती
0: फिर से
2: महानगर
0: चिट्ठी
2: पालिका की
0: लिखेंगे
2: है, क्योंकि
0: बीएमसी को? एक छोटा सा बच्चा चला गया है अब।
2: कल हम एक रेसिडेंशियल करके कल हम वार्ड ऑफिसर को एक निवेदन देने वाले हैं इस बात पे, और दोबारा यहाँ पर ट्रिमिंग हो जाए ये हमारी मांग है। क्योंकि यहाँ पर अभी ये रोड के बाजू में 3 स्कूल है, OLPS, सेंट एंथनीज एफेक्ट, उसके बाजू में कर्नाटक के अपोजिट साइड में सरस्वती है। मतलब ये जो लेन है हमारा, यहाँ पर ही नियर बाय 100 मीटर्स पे ही 3 से 4 स्कूल्स है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते जाते रहते हैं। दोबारा ये घटना ना हो, इसीलिए हमने वापस कल दोपहर 11 बजे का हमने टाइम लिया हुआ है DMC से, और उन्हें उनको हम ये निवेदन देने वाले हैं कि दोबारा ये ट्रिमिंग की जाए। बारिश तो अभी 2-4 दिन से चालू हो गई है, यहाँ पर ट्रीमिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर सर ये तो घटना होने ही वाली थी।
0: मेरा आखिरी सवाल दीपेश जी, NDTV ने मुंबई के मेयर को कन्फ्रंट किया, उनको सवाल किया कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, बार बार इतने कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे आपके डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका डिपार्टमेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला है NDTV को कि वो जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कुछ नेग्लिजेंस या लैप्स हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ नहीं होगा?
2: देखिए, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, और अगर नहीं ले पाएंगे तो हम यहाँ के रेसिडेंशियल सारे मिलके वापस दोबारा मोर्चा निकालेंगे। क्योंकि एक जो बच्चा जिसके जिसका देहांत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो आज एक लौता बेटा था, 11 साल का बच्चा था। कल ये ना होवे कि कोई हमारे घर से हो जाए घटना, कहीं आपके घर से हो जाए, ये जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर्स की, गार्डन डिपार्टमेंट्स की, रोड डिपार्टमेंट की। यहाँ पर CC रोड्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो भी पूरा काम कंप्लीट नहीं है। आप अभी भी मुझे, आप कल भी आ जाओगे दिन में तो भी मैं ये बताने के लिए रेडी हूँ कि कितने सारे रोड्स पे हर झाड़ के ऊपर इन्होंने सीमेंट कंक्रीट डाल के रखा हुआ है, हर झाड़ पे,
0: जी,
2: तो रूट्स तो वहाँ के मरने ही है।
0: दीपेश जी, हमसे और NDTV
2: और
0: से
2: हम
0: बात करने के लिए
2: कोशिश
0: बहुत
2: कर रहे हैं कि
0: धन्यवाद।
2: कल से।
0: जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि
2: थैंक यू,
0: NDTV का रिपोर्टिंग जारी रहेगा इस मुद्दे पर, इस स्टोरी पर हम ध्यान रखेंगे और हम जस्टिस लाएंगे विहान श्रीवास्तव के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपेश। Meanwhile, something deeply disturbing is happening in the CR Goyal case. Alongside the unfolding police investigation, viewer, a parallel campaign appears to have begun to soften the glare on the young woman accused of murdering her fiancé, Ketan Agarwal. It's a story that has taken the country by storm. It's happening at different levels, I don't know if you've noticed, by different stakeholders, all gently nudging the narrative away from the alleged crime and towards the accused herself, Siya Goyal, as a victim. Not a ruthless murderer, but a trapped young woman. Not a privileged girl who allegedly chose a horrifying solution, but the pitiable product of patriarchy. Yes, context matters, but this increasingly looks like a coordinated exercise to me in dilution, deviation, and distraction. Siya Goyal's family, understandably desperate to protect their daughter, is engaging in narrative shaping and trying to shift attention onto Ketan, the victim, and his family. Influencers on social media are finding everyone else to blame except Siya. feminists are asking why the focus isn't on smashing the patriarchy instead of the accused. Commentators and columnists are intellectualizing the case with essays about marriage, youth culture, and social pressures. Perhaps some of those conversations deserve to happen at some point, but not at the cost of losing sight of the central question. A young man, Ketan, is dead. Investigators say this was a calculated murder. If the allegations are true, the choices that matter most are the ones Sia Goyal allegedly made and the questions that now confront her and her family, not everyone else.
3: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
4: सख्त से सख्त मतलब क्या?
3: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा. फांसी की
4: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
3: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
4: आप होशो हवास में.
3: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
4: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे? क्या आपको जानकारी थी?
5: दोस्त थे वो भी, जब मार्के अड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे. बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है.
4: रिलेशनशिप वाला नहीं,
5: रिलेशनशिप वाला नहीं था. अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी या केतन के साथ कभी आप उनको लगा कि उस सिया प्यार नहीं कर रही तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है. ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं चार महीने में.
4: क्या आपको भी केतन को लेकर सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को?
6: दुख मुझे बहुत दुख है. मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को. आज मेरे बेटा साहिब भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया. मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ. मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए.
4: किसी ने भी,
6: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है.
4: अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे हमारे सूत्रों के हिसाब से, ये भी पता चल रहा है. ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं.
5: वो किस फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
4: मतलब
5: उदयपुर में. हाँ,
4: रिलेशनशिप में थे?
5: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया.
4: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
5: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का.
0: नाउ इट माइट बी अ स्ट्रेच टू से देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड सेव सिया कैंपेन, अ नेफेरियस नैरेटिव, बट आई वांट यू टू जस्ट कंसीडर व्हाट इज हैपनिंग. नंबर वन, फ्रॉम द फैमिली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स एज यू जस्ट सॉ टू कंफ्यूज नैरेटिव सेटिंग ऑन द डॉटर एंड ऑल्सो सोइंग सीड्स ऑफ सिंपथी. Then you've got feminist activists who are peddling this entire patriarchy angle, suggesting that Sia Goyal was the one who was harassed. You've got influencers on social media, we don't know whether they're paid or unpaid, projecting Sia as a victim because now this story is about digital content, getting millions of views. They're also projecting Ketan as the aggressor. And on the top of all of this, you've got intelligentsia, columnists, commentators, calling it a generational issue, blaming youth culture and pinning it sometimes on marital dynamics. Basically, everything other than the centrality of the crime committed by allegedly Sia Goyal herself. To talk a little bit about how this unfolding saga is shaping up, I'm joined now by veteran IPS officer and law enforcer Dr. Kiran Bedi, former Lieutenant Governor, and someone whose word is taken more seriously than anyone else I know when it comes to issues of this kind. Dr. Bedi, always a privilege. Thank you, ma'am, for your time tonight on this story. My first question is a broad one, ma'am. You know, it has been nearly 2 weeks since this crime took place. You've seen the twists and turns that are taking place. What are you making of it, Dr. Bedi? Welcome.
7: Yeah, I'm wanting to ask the police, have they involved a psychologist in their interrogation or a psychiatrist in the investigations? Mm. If they have, it'll be the right thing to do. If they haven't, they must. Because it's all about the mind. What's gone on the minds before? Because all that you, I know, or you know,
0: yes.
7: is what's hearing in the newspapers time to time, isn't it?
0: Yes.
7: That's

0: has said that there was no role that he played in the donation theft. Investigators are now preparing to question a list of 140 individuals, including other officials of the trust, staff and bank employees. But as this probe is gaining momentum, the opposition is now coming together in a more cohesive joint effort against the Yogi government. Asaduddin Owaisi is the latest one to enter the fray. He, in fact, today had a piece of advice for the trust. He said, why are you bothering with all this Champat Rai, Anil Mishra? You should just get a Muslim in the trust. You should hold him accountable and you should bulldoze his house. Problem solved. The Congress, on the other hand, is eyeing the first mover's advantage. A delegation of the party tried to visit the Ram temple today in Ayodhya, but this was preceded by high drama because they said not only were they stopped by the administration, they were put under house arrest. And a dramatic video was shared by the UP Congress chief, Ajay Rai, where he said that a guest house in Ayodhya had been turned into a prison for him.
1: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते चंपक तो मजे में है चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है आप बताइए क्या हो रहा है
2: टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे आनन फानन में एसआईटी की रिपोर्ट आई और चपत लगाने के बाद चंपत राय बंसल जो ट्रस्ट के महासचिव थे सर्वे सर्वा थे वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी
3: हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में एक होटल है यहाँ का पद्मश्री उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है सरकार हमें रोकेगी और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30-11 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है
4: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है अजय राय साहब को क्यों रोका गया वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया लूटमार हो गई है दान पत्र में दान पेटी में उस बारे में बात करेंगे इसलिए ये कौन है राम मंदिर उनके बाप की जागीर है क्या
0: But through all of this, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has remained unfazed. Remember, he's on a whistle-stop tour of the entire state, already preparing and counting down to the assembly election. Far from being on the back foot, he in fact took on both the Congress, the Samajwadi Party, and reminded people of their history. He said that those who had even refused to acknowledge the existence of Lord Ram today are saying, Ram sabke hai. And that raises the central question tonight. Is this a genuine surge of devotion or is this vote bhakti ahead of 2027? And is the Yogi government finding itself under sustained pressure? Will there be bulldozers brought out against the Chanda Chors?
5: 2017 ke pehle jo Jai Sri Ram bolne par laathi marte the. 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं प्रभु राम तो जग नियंता हैं इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है उनकी चिड़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई उनकी चिड़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया
0: Interesting that now cutting across the political divide, everyone is insisting Ram sabke hai. Ram is on everyone's lips and just in time for the UP elections. Joining us, Pradeep Bhandari, spokesperson of the BJP. We have political analyst Sanjay Jha joining us along with senior journalist Harshvardhan Tripathi. But I want to start by asking Waris Pathan of the AIMIM. Everyone is talking about the temple. Where did you get in a Muslim in the temple trust and all?

0: Most likely from July 20th, the session will begin. And the government has got very ambitious legislative agenda. Mm. We should not forget that in the last session, they were trying to push for this delimitation bill, which was not succeeded. It was defeated by the opposition parties. And apart from that, the government is also wants to have this one nation, one election bill, one ONOE, that's what we call. So these two crucial bills our government wants to push. And you have seen that how the government was trying to muster two-third majority in both the houses. Mm. We have seen a split in the TMC. We have seen a split in the Shiv Sena UBT. And now these people have also joined the NDA. So now they also want to have their share in power. So of course, all these permutation combinations are there. That's why the government wants to have first these bills get passed. And after that, maybe this session gets over. Then they may think about this cabinet.
1: So I think the one window available is 11th, when the Prime Minister returns from his next foreign trip, and the 20th or 21st. So that is the big window. And then I think there's before that, 5th or 7th. Is when he is in town.
0: Fifth is the window, because from 1st to 3rd, the Japanese PM is in the country. Mm. PM will be busy with the engagements. And on 4th, PM is going to Rajasthan. Fifth is the only vacant day so far. And after that, PM is going to go for this three countries visit to Indonesia, Australia, and New Zealand. So after that, once he comes back, the parliament session will have just, you know, 10 days gap. Mm. Though in the past, we have seen that just before the parliament session, the cabinet expansion has taken place. Mm. But we have to see whether this actually happens this time or not.
1: And in fact, twice earlier, the cabinet expansion or the cabinet changes have happened in the month of July. So I think all the ministers have their heartbeats up. And all the MPs also have their heartbeats up. Because Harshvardhan ji, bade isme Twitter pe bahut kuch chal raha tha. Kai logon ne to lambi lambi list bhi nikal di. Kuch log ye bhi keh rahe the ki Monday ko sare MPs ko, mantriyon ko Delhi bula liya gaya hai. To aaj to ho jana chahiye tha, phir reshuffle ye sab Twitter ki uske hisab se. Aap kya sun rahe hain? Kitne changes honge aur kab honge?
2: Nahi. Ji, mujhe lagta hai ki Akhilesh ne wo baat bata di jiski baat hum log karte hain na, ki एक तो सोशल मीडिया पर मोदी गवर्नमेंट चलती है और एक रियल में मोदी गवर्नमेंट चलती है. दोनों के बीच में बड़ा फासला है. अब ये इतना सरप्राइजिंग है कि कोई पूरी की पूरी लिस्ट कर दे, यानी जो कुछ आपको ऑब्वियस दिख रहा है उसके लिहाज से कुछ कहानियां बना दे. क्या सचमुच मोदी गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है? तो कम से कम 12 साल का और उसके पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी का यह प्रेसिडेंस है ही नहीं. और तो और, नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे तब भी ये प्रेसिडेंस नहीं है कि उनके काम करने के तरीके को कोई बहुत अच्छे से अनुमान लगा पाए. अब उसके दोनों वजह हैं उसमें. जब आप एकदम से इस तरह से करेंगे, जैसे अभी उदाहरण के लिए, जब आप अपनी जो टीम बनाते हैं उस टीम की जानकारी क्या बहुत लोगों से चर्चा होती है? तो ये बताकर कभी चर्चा नहीं होती, जो हमने नेशनल प्रेसिडेंट के समय देखा कि जो एक नवीन प्रयोग हुआ, नितिन नवीन यहां आ गए. अब नितिन नवीन को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि शायद आज के समय के लिहाज से कई पैमानों के साथ नितिन नवीन जैसा नेता वहां चाहिए था उनको. लेकिन अब उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. जैसे अभी जो कैबिनेट बनने वाली है और जो नेशनल टीम बनने वाली है, जो अलग अलग राज्यों में दिखा कि नितिन नवीन के साथ युवा मोर्चा में काम किए हुए लोग वो अचानक बड़ी जिम्मेदारी में आ गए, तो एक बड़ा गैप सा दिखने लगा. फिर बीजेपी के लोग वो कैबिनेट में आएंगे, जो कैबिनेट की टीम है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर थे उस पर प्रश्न चिन्ह जहां लगा, क्वेश्चन मार्क, उन सब को सोशल मीडिया पर मिनिस्ट्री से आउट कर दिया गया. और जहां जहां लगा कि यह गुंजाइश बन सकती है उनको इन कर दिया गया. जो अखिलेश कह रहे हैं वो उसी तरह की एक टीम बनाई गई और कहा गया कि उनको फोन कर दिया गया है. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 दिन पहले मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को पता चला है. दोनों बार जो एक्सपेंशन हुआ था उसके पहले की शाम को और उस दिन की सुबह को जो लास्ट मिनट जो एडिशन हुआ था वो पता चला था, वो अखिलेश जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे. मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है मोदी 2.0, मोदी 3 का, मोदी 2.0 का टाइम है. बड़े चेंजेज होने वाले हैं, एकोमोडेशन बहुत से होने वाले हैं. और जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी को पता है 29 के चुनाव के लिए इस टीम के साथ जाना है.
1: अखिलेश, आई विल आस्क यू स्पेसिफिक्स. इज इट ट्रू दैट 3 पार्टीज विल गेट greater representation? One is the Shiv Sena. NCPI will be included because now they are the second largest party technically in the NDA. And also Aam Aadmi Party, the rebels who have come.
0: I think first let's talk about the TMC rebels who have joined this NCPN. And what I believe that they have been promised cabinet berth.
1: Okay.
0: They will be part of the government. But as I mentioned earlier, that, you know, they have to first support these bills to get passed in the monsoon session. After only that.
1: How many berths have they been promised?
0: See, the kind of number they have, we have seen that the formula is very.

0: The chilling details have transformed what was once just another trekking destination into the center of a sensational crime story.
1: अभी तक लोहे का देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ. क्या है कि हत्याकांड हुआ, इसको अपने को जानने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन क्या है हाँ. कि अभी जाने को नहीं मिल रहा है.
2: काफी अच्छा व्यू था.
3: अच्छा.
2: नज़ारे बहुत हाँ. अच्छे हैं
3: हाँ.
2: और साफ सफाई भी ठीक है, अच्छी हाँ. है. थोड़ी हाँ. सी मैनेजमेंट सिक्योरिटी और बढ़ सकती है. ऊपर अच्छा. पुलिस, जैसे इंसिडेंट हाँ. अभी रिसेंटली हुआ है, इसको चलते थोड़े से गार्ड्स ऊपर बढ़ाने चाहिए.
4: मेरा मन नहीं था आज लोहगढ़ आने का, लेकिन मैं सुबह निकला, मैं कारला लेने जाके लोहगढ़ में आ गया. तो ऊपर जैसे ही मैं गया तो मेरे मन में था कि वो स्पॉट देखूं जहाँ से वो केतन भाई को जो ढकेला है सिया ने, और बहुत से लोग अभी ऊपर जब भी जा रहे तो वही स्पॉट देख रहे कि कहाँ से ढकेला रहेगा.
0: बिल्ट इन द मिडीवल पीरियड एंड वंस कंट्रोल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, Lohagarh has long been celebrated for its architecture, trekking trails and panoramic views. Today, however, conversations here are dominated by a very different story. NDTV Bureau Report.
5: Meanwhile, another news, shocking case of medical apathy has come from Rajasthan's Jaipur. SMS Hospital has patients perhaps waiting for a kidney transplant from several days. And the reason is as shocking as possible. The files of at least 11 patients are locked in a room of a senior retired doctor who left after his farewell but left several patients in the lurch. The hospital was quick to deny any such reports and assured that there is no delay in the treatment, but the ground reality is completely different. Here's a report.
6: For the past 4 months, 59-year-old Jayanti Lal and his wife Anita have called this small room in Jaipur home. More than 530 kilometers away in Rajasthan's Banswara district, their son is running the family's tiny grocery shop alone, the only source of income, while his parents wait for a life-saving surgery. Jayanti Lal is ready to donate one of his kidneys to his wife. The donor has been cleared, the paperwork is complete, the no objection certificate has been issued. But the transplant has still not happened. They are not alone. Some have been here for weeks, others for months. And a few have spent nearly a year here. What unites them is the same diagnosis, kidney failure, and the same uncertainty, waiting for their turn for a transplant.
7: Kidney to dono damage ho gayi hai. To pani bhar gaya tha, pura sharir mein sujan aa gayi thi. Isliye yahan ek saal bhar pehle bhi dawai karwai thi. फिर अभी डॉक्टर ने कहा कि आपका, फिर उन्होंने कहा कि मैं किडनी दे दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दवाइयों करके. फिर चालू हो गई दवाई, फिर सब रिपोर्ट कंप्लीट करवा दी.
8: ठीक है, ठीक है. और आप डायलिसिस के लिए जाते हैं रोज?
7: नहीं, हफ्ते में दो बार जाते हैं. अब पहले तीन करते थे, अब दो कर रहे.
6: On May 30th, their treating doctor, senior nephrologist Dr. Dharanjay Agarwal at the SMS hospital, retired. According to the family, their surgery was delayed by nearly a month. Room number 518 on the fifth floor of the nephrology department has now become the center of controversy. This was Dr. Dharanjay Agarwal's office. Patients allege that after his retirement, records relating to transplant cases remained locked inside, delaying treatment for several patients awaiting surgery. The room has now been opened and another doctor, Dr. Sanjeev Sharma, has taken charge.
9: तो ये चल रहा है, वो जो न्यूज़ थी वो ये थी कि भाई रूम लॉक्ड है. तो अब वो रूम लॉक्ड नहीं है, उसकी की आ गई है और वो रूम खुल गया है. तो रूम लॉक्ड होने से कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं है. पेशेंट का तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट जो एंड स्टेज रिनल डिजीज वाले पेशेंट्स का होता है, जो उनका न्यूट्रिशन है, जो एंटीबायोटिक्स है, जो उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो डायलिसिस है, वो चल रहा है. उसकी वजह से नहीं, कमरा ये था कि कमरा बंद है इसलिए ट्रांसप्लांट रुक गया. कमरा बंद होने से तो ट्रांसप्लांट नहीं रुकता है.
6: Following questions over the delays, hospital authorities have reassigned the pending transplant cases. For Jayanti Lal and Anita, that has brought a glimmer of hope. Doctors have now assured them that if their medical parameters remain stable, Anita's transplant could be performed within the next 2 weeks.
10: डॉक्टर ने सब कागज सब जमा करा दिए, हमने तो पूरी रिपोर्ट सब जमा कर दी. हमारी दोनों की मैच किडनी में आ रही है. बस 15 मार्च से डॉक्टर साहब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद से नहीं फाइल अटक गई, बाकी थोड़ा ज्यादा.
6: Inside the same Dharamshala is Nitin Saini, who has traveled from Uttarakhand. His sister has been found to be a matching donor. While waiting for surgery, Nitin continues to undergo dialysis.